0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है संत पेत्रुस एवं संत पौलुस के महापर्व के अवसर पर पोप लियो 14वें का ख्रिस्त्याग प्रवचन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। कलीसिया के महान प्रेरित एवं रोम के संरक्षक संत पेत्रुस एवं संत पौलुस के महापर्व के अवसर पर 29 जून को पोप लियो 14वें ने वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजा घर में समारोह ख्रिस्त्याग अर्पित किया तथा विश्व भर के 35 नए महाधर्म अध्यक्षों को पालियों प्रदान की।

0: संत पापा ने अपने उपदेश में संत पेत्रुस एवं संत पौलुस की विशेषता बतलाते हुए महाधर्माध्यक्षों को उनके समान बनने की प्रेरणा दी। अपने उपदेश में उन्होंने कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo.
0: प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज एक ही महापर्व में हम रोम शहर एवं धर्म प्रांत के संरक्षक संत पेत्रुस एवं संत पौलुस की याद कर रहे हैं। एक को यीशु ने अपने झुंड के चरवाहे के रूप में चुना था और दूसरे को गैर यहूदियों के प्रेरित के रूप में। उनमें हम कलीसिया के दो स्तंभों का सम्मान करते हैं। संत पेत्रुस की याद करते हुए पोप लियो ने कहा, संत पेत्रुस ईश प्रजा के रखवाले, जिन्हें नए व्यवस्थान में अक्सर भाइयों के बीच मेल मिलाप बनाए रखने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। वे ही हैं जो गलीलिया सागर पर रात भर की व्यर्थ मेहनत के बाद प्रभु से कहते हैं, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। फिर वे दूसरों को अपने साथ लेकर नाव पर निकल पड़ते हैं। जब बहुत से लोग जीवन की रोटी पर कठिन बातचीत के बाद प्रभु से दूर हो रहे थे, तब वे ही थे जो प्रभु से कहते हैं, हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। और वे अन्य 11 प्रेरितों के साथ वहीं रह जाते हैं। कैसरिया में वे ही यीशु को ईश्वर के पुत्र मानते हैं, और जैसा कि हमने सुसमाचार में सुना, एक विश्वास को व्यक्त करते हुए सभी की तरफ से बोलते हैं। पुनरुत्थान के बाद भी झील के किनारे पेत्रुस सबसे पहले यीशु के पास पहुंचते हैं, पानी में कूद जाते और दूसरों से आगे तैरते हैं, ताकि वे नम्रता से अपने प्यार को पुनः व्यक्त करते हुए अपने मिशन की पुष्टि कर सकें। पेत्रुस इस मिशन के प्रति तब भी वफादार रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब यरूशलेम में बिना खतने वाले गैर यहूदियों को बपतिस्मा लेने वालों में शामिल करने के सवाल पर समुदाय में फूट पड़ने का खतरा होता है, वे भाइयों को इकट्ठा करते, उनकी बात सुनते और अंत में पौत्र आत्मा के मार्गदर्शन में एक ऐसा फैसला लेते हैं जो उनकी एकता बनाए रखता और ईश्वर की समस्त प्रजा के लिए एक नए युग की शुरुआत करता है। वास्तव में वे कहते हैं, हमें विश्वास है कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा से बच जाएंगे जैसे वे बच जाएंगे। इसके बावजूद संत पापा ने पेत्रुस के कमजोर पक्ष पर गौर करते हुए कहा कि इस उदारता का मतलब यह नहीं है कि पेत्रुस पूर्ण है। दुख भोग के दौरान वे प्रभु को अस्वीकार करते हैं और बाद में वे सच्चा पछतावा करते हैं। खुद पौलुस भी विभिन्न परिस्थितियों में उनके कुछ कामों में गड़बड़ी के लिए उन्हें डांटते हैं, लेकिन पेत्रुस अपनी गलतियों को स्वीकार करना और पछतावा करना जानते हैं। बिना निराश हुए और सुसमाचार का प्रचार करने एवं मसीह के झुंड को एकत्रित करने के अपने मिशन में नाकाम हुए बिना, यहाँ तक कि शहीद होकर भी, जिसको उन्हें यहाँ रोम में झेलना पड़ा, जो हम जहाँ एकत्रित हैं उससे ज़्यादा दूर नहीं है। एकता के इस भरोसेमंद और धैर्यपूर्ण चिंता को कुंजियों के प्रतीक द्वारा व्यक्त की जाती है, जिसके साथ हम अक्सर पेत्रुस की पहचान करते हैं। कुंजी दरवाजों को तोड़ती नहीं, बल्कि यह बेहतर उचित उत्तोलक ढूंढकर और उसकी गतिविधियों को संचालित करके उन्हें खोलती और बंद करती है, ताकि ताले खुल सकें और दरवाजे अपने कब्जों पर स्वतंत्र रूप से घूम सकें, जिससे कमरे एक साथ जुड़ सकें और कई अलग अलग स्थानों को एक स्वागत योग्य घर में बदला जा सके। उसी प्रकार कलीसिया के भीतर सहभागिता लोगों की अपनी स्थिति से सख्ती से चिपके रहने से नहीं बनती, बल्कि सभी दिलों में सच्चाई से मुलाकात करने के बिंदुओं की तलाश करने से बनती है, जिसके प्रकाश में ही प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के विकास का साधन बनता है। इसी आलोक में हम प्रभु द्वारा पेत्रुस और उनके उत्तराधिकारियों को ईश्वर के संपूर्ण पौत्र प्रजा के हित सौंपे गए मिशन की व्याख्या कर सकते हैं। अपने भाइयों और बहनों को सिखाना, हिम्मत देना, समझाना और उनका साथ देना, ताकि वे एक ही आत्मा के काम के प्रति समर्पित होकर एक दूसरे और पूरी मानव जाति के उद्धार में साथ दे सकें। इसके अलावा पेत्रुस का उदाहरण हर ख्रिस्ते को एकता बनाए रखने, ईश्वर को अपने जीवन के केंद्र में रखने और अपने भाइयों एवं बहनों के करीब आने और उनकी परिस्थितियों एवं जरूरतों पर ध्यान देने का निमंत्रण है। इस तरह हम एक दूसरे के साथ प्यार करना सीखते हैं ताकि सुसमाचार का प्रचार पूरी तरह से किया जा सके। इसके बाद संत पापा ने संत पौलुस के बारे बतलाते हुए कहा, यह संत पौलुस की भी शिक्षा है जिनका आज हम महापर्व मना रहे हैं और जो सुसमाचार के अथक संदेश वाहक हैं, उनके भी कुछ खास चिन्ह हैं, किताब और तलवार जो एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े हैं। इब्रानियों के नाम पत्र के लेखक इसे अच्छी तरह से समझाते हैं जब वे लिखते हैं, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंततम में पहुंचता है और हमारे मन के भावों एवं विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। संत पापा ने कहा, यही ईश्वर ने युवा साउल के दिल में पूरी की। उन्हें जीतकर पहले सुसमाचार के प्रति मन परिवर्तन कराया और उसे एक नया नाम दिया और उन्हें फिर पूरी दुनिया में इसका प्रचार करने के लिए भेजा, जिन्हें संत पेत्रुस की तरह इसी शहर में अपनी जान देकर सुसमाचार की गवाही देनी पड़ी। संत अगस्टीन संत पौलुस के मन परिवर्तन एवं प्रेरिताय पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, जब वे धमकियों एवं हत्याओं से भरे दिल के साथ दमिश्क जा रहे थे तो उन्हें नाम से पुकारा गया। एक स्वर्गीय वाणी ने उन्हें भूमि पर गिरा दिया, यानी उस वचन ने उन्हें बुलाया। और वे आगे कहते हैं, ईश्वर ने कलीसिया के सताने वाले को चुना और उन्हें शांति का संदेश वाहक बना दिया। उसने उसके सारे पाप क्षमा कर दिए और उन्हें एक ऐसी प्रेरिताई के लिए नियुक्त किया जहां वे दूसरों के पाप क्षमा कर सकें। संत पापा ने उपस्थित कार्डिनलों एवं धर्माध्यक्षों को संबोधित कर कहा, प्रिय मित्रों, आज हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इन दो संतों पेत्रुस और पौलुस की ओर देखें ताकि हम यह समझ सकें कि हम कैसे एकता के प्रेरित और निर्माता एवं उदारता में सत्य के उदार सेवक बन सकते हैं। पोप ने आगे कहा, इसी भावना के साथ हम महाधर्माध्यक्षों को पाल्य प्रदान करने के प्राचीन एवं मार्मिक अनुष्ठान को मनाने वाले हैं। क्रूस से सजे सफेद उनके ये पट्टे वास्तव में हर चरवाहे की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं और हर ख्रिस्ते की भी। ईश्वर के झुंड के कई मेमनों की तरह उन्हें सौंपे गए भाइयों एवं बहनों को अपने कंधे पर लेने के लिए और उनके लिए अपनी शक्ति, समय, प्रयास और यहाँ तक कि अपने जीवन का बलिदान करने के लिए भी। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सुसमाचार हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके और पूरी दुनिया इसमें सद्भाव एवं सामंजस्य पा सके। और अंत में संत पापा ने कुस्तुनतुनिया से आए प्रतिनिधियों को संबोधित कर कहा, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं कुस्तुनतुनिया के ख्रिस्ते एकता प्राधिधर्माध्यक्ष के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का दिल से अभिवादन करता हूँ, जिन्हें मेरे प्यारे भाई प्राधिधर्माध्यक्ष बर्थोलोमियो ने भेजा है और जिसका नेतृत्व खलदेई महाधर्माध्यक्ष इमानुएल एडमाकिस कर रहे हैं। प्रार्थना के लिए आमंत्रित करते हुए पोप लियो ने कहा, आइए हम संत पेत्रुस एवं पौलुस से प्रार्थना करें कि वे हमें मुक्तिदाता के पद चिन्हों पर हमारी एकता की यात्रा में हमारा साथ दें। यही वह रास्ता है जो उन्होंने हमारे लिए बनाया है, वही जिसके लिए उन्होंने अंतिम बिहारी में पिता से प्रार्थना की थी और वह लक्ष्य जिसके लिए उन्होंने हमें पक्की उम्मीद के साथ आगे बढ़ना सिखाया है।
1: La meta alla quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में तीर्थ यात्रियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने कहा, आज हम रोम के संरक्षक संत पेत्रुस और पौलुस का महोत्सव मना रहे हैं। यह त्यौहार उस असली बंधन को याद दिलाता है जो रोम की कलीसिया को दुनिया भर की दूसरी कलीसियाओं के साथ विश्वास और प्यार की एकता में जोड़ता है। संत पापा ने कहा कि सुसमाचार में इन दो प्रेरितों की गवाही एक सील का पत्थर है। इस शहर में उन्होंने जो खून बहाया वह ईश्वर के उस प्यार की गवाही को दिखाता है जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है। यह उनके वचन और उनकी शहादत से ही है कि ख्रीस्त का सुसमाचार एक तरह से रोम में जड़ जमा चुकी है। यही इसी राजधानी में ईश्वर के नए ज्ञान और हर इंसान की अनंत गरिमा के जरिए नवीनीकरण की अपनी शक्ति को दिखाता है। शक्ति की एक नई पहल प्रभुत्व के तौर पर नहीं बल्कि मानव जीवन की सेवा के तौर पर। संत पापा ने कहा, संत पेत्रुस और पौलुस एक दूसरे से बहुत अलग थे। उनकी पृष्ठभूमि, परवरिश और स्वभाव भी अलग थे, न सिर्फ बुलाए जाने से पहले बल्कि बुलाए जाने के बाद भी, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें एक जैसा नहीं बनाया था। पेत्रुस और पौलुस ने सुसमाचार को समझा, हर एक की अपनी अलग अलग आवाज में इसका प्रचार किया और पवित्र आत्मा ने सुसमाचार के लेखकों को प्रेरित करते हुए नहीं चाहा कि उनके अंतर छिपे रहें। ये अंतर हमें अच्छी खबर के तौर पर दिखाए गए हैं। संत पापा ने कहा कि प्रेरितों की मंडली में पेत्रुस और पौलुस एक तरह से उन कई अलग अलग चीजों की निशानी बन गए जिन्हें एक आत्मा पूर्णता से जोड़ती है। इस तरह रोम की कलीसिया के संरक्षक संतों ने मेल जोल की चुनौतियों का अनुभव किया। वे इसे जानते थे, इसकी सेवा करते थे और इसे दिव्य जीवन का संस्कार मानते थे। उनकी गवाही ने यह पक्का करने में अहम योगदान दिया है कि इतिहास में ख्रिस्तियों की उपस्थिति राज करने की तरफ से नहीं बल्कि सेवा, एकता और मेल मिलाप की तरफ से हो। देवदूत प्रार्थना करने के बाद संत पापा ने कहा, आज हम संत पेत्रुस पेंस दिवस अर्थात दान दिवस मना रहे हैं। मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो पेत्रुस के उत्तराधिकारी के तौर पर मेरे काम को अपने दान द्वारा समर्थन करते हैं। आइए हम विश्वास और मेल जोल के साथ साथ चलते रहें। संत पापा ने रोम के संरक्षक संतों के त्योहार पर रोम के लोगों और इस शहर में रहने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। संत पापा ने खासकर बीमारों, अकेले लोगों और कैदियों के लिए प्रार्थना की। संत पापा ने पल्ली पुरोहितों, रोम में काम करने वाले पुरोहितों, धर्म बहनों और धर्म संघियों का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वे अपनी मौजूदगी और दैनिक सेवा द्वारा महान ख्रिस्तीय दिल को जिंदा रखते हैं। फिर संत पापा ने प्रो लोको दी इतालिया के स्वयं सेवकों को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस दिन विया देला कोंचिलिया सियोने और पियाजा पियो 12वें में अनेक सुंदर अल्पना बनाए हैं। संत पापा ने गिरांडोला दी कास्तेल संत आंजेलो का भी शुक्रिया अदा किया जो इस साल संत फ्रांसिस असीसी की मृत्यु की 800वीं सालगिरह पर संत फ्रांसिस और सृष्टि को प्रकट करते हुए अल्पना बनाया। अंत में संत पापा ने उन बेघर लोगों का अभिवादन किया जो आज संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में ओजरवा तोरे दी स्त्रादा अखबार बांटने आए हैं। यह ओजरवातोरे रोमानो अखबार का पूरक है। इस समाचार पत्र का समर्थन करने वालों को संत पापा ने धन्यवाद और शुभकामनाएं दी और अंत में सभी को गर्मी की छुट्टियों की शुभकामनाएं दी। और रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान संत पापा लियो 14वें ने स्पानी भाषा में वेनेजुएला के प्रति अपनी नजदीकी जाहिर की, जहाँ इस हफ्ते एक के बाद एक दो बड़े भूकंप आए। उन्होंने सभी को पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ साथ बचाव दल के काम के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया। संत पापा ने कहा, मैं हाल के भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला के बहनों और भाइयों के प्रति अपनी नज़दीकी जाहिर करता हूँ। भूकंप की वजह से कई लोग पीड़ित और घायल हुए हैं। साथ ही बहुत सारा सामान भी बर्बाद हुआ है। हम पीड़ितों, उनके परिवारों और इस दुखद घटना के नतीजों से जूझ रहे सभी लोगों के लिए अपनी प्रार्थनाओं का भरोसा दिलाती हैं। हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उस प्यारे देश के प्रति एकजुटता में कमी न लाए। बचाव दल ला गुएरा में मलबा निकालने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। शनिवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,500 हो गई थी और लगभग 70,000 लोग अभी भी लापता हैं। संत पापा ने पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद के लिए तुरंत 1,00,000 यूरो का शुरुआती दान भेजा। और संत पापा लियो 14वें ने 26 और 27 जून तक वाटिकन में हुई असाधारण कंसिस्ट्री के अंत में अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने उम्मीद, सहभागिता, युद्ध और इंसानी रिश्तों में संकट से जूझ रही दुनिया में कलीसिया की जिम्मेदारी पर ध्यान दिया। संत पापा ने कहा, हमने प्रभु की इच्छा को एक साथ खोजा है, आश्वस्त किया है कि मसीह अपनी कलीसिया में कार्य करना जारी रखते हैं। ये वे ही हैं जो हमारे सामने जाते हैं, हमें इकट्ठा करते हैं, हमारे भाइयों के माध्यम से बोलते हैं और हमें मिशन में ले जाते हैं। सब कुछ उसी से आता है और सब कुछ उसी में लौट जाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesantpetro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है संत पेत्रुस एवं संत पौलुस के महापर्व के अवसर पर पोप लियो 14वें का ख्रिस्त्याग प्रवचन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। कलीसिया के महान प्रेरित एवं रोम के संरक्षक संत पेत्रुस एवं संत पौलुस के महापर्व के अवसर पर 29 जून को पोप लियो 14वें ने वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजा घर में समारोह ख्रिस्त्याग अर्पित किया तथा विश्व भर के 35 नए महाधर्म अध्यक्षों को पालियों प्रदान की।

0: संत पापा ने अपने उपदेश में संत पेत्रुस एवं संत पौलुस की विशेषता बतलाते हुए महाधर्माध्यक्षों को उनके समान बनने की प्रेरणा दी। अपने उपदेश में उन्होंने कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo.
0: प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज एक ही महापर्व में हम रोम शहर एवं धर्म प्रांत के संरक्षक संत पेत्रुस एवं संत पौलुस की याद कर रहे हैं। एक को यीशु ने अपने झुंड के चरवाहे के रूप में चुना था और दूसरे को गैर यहूदियों के प्रेरित के रूप में। उनमें हम कलीसिया के दो स्तंभों का सम्मान करते हैं। संत पेत्रुस की याद करते हुए पोप लियो ने कहा,

देश है और वे अन्य 11 प्रेरितों के साथ वहीं रह जाते हैं। कैसरिया में वे ही यीशु को ईश्वर के पुत्र मानते हैं और जैसा कि हमने सुसमाचार में सुना, एक विश्वास को व्यक्त करते हुए सभी की तरफ से बोलते हैं। पुनरुत्थान के बाद भी झील के किनारे पेत्रुस सबसे पहले यीशु के पास पहुंचते हैं, पानी में कूद जाते और दूसरों से आगे तैरते हैं ताकि वे नम्रता से अपने प्यार को पुनः व्यक्त करते हुए अपने मिशन की पुष्टि कर सकें। पेत्रुस इस मिशन के प्रति तब भी वफादार रहते हैं, उदाहरण के लिए जब यरूशलेम में बिना खतने वाले गैर यहूदियों को बपतिस्मा लेने वालों में शामिल करने के सवाल पर समुदाय में फूट पड़ने का खतरा होता है, वे भाइयों को इकट्ठा करते, उनकी बात सुनते और अंत में पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में एक ऐसा फैसला लेते हैं जो उनकी एकता बनाए रखता और ईश्वर की समस्त प्रजा के लिए एक नए युग की शुरुआत करता है। वास्तव में वे कहते हैं, हमें विश्वास है कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा से बच जाएंगे जैसे वे बच जाएंगे। इसके बावजूद संत पापा ने पेत्रुस के कमजोर पक्ष पर गौर करते हुए कहा कि इस उदारता का मतलब यह नहीं है कि पेत्रुस पूर्ण है। दुख भोग के दौरान वे प्रभु को अस्वीकार करते हैं और बाद में वे सच्चा पछतावा करते हैं। खुद पौलुस भी विभिन्न परिस्थितियों में उनके कुछ कामों में गड़बड़ी के लिए उन्हें डांटते हैं, लेकिन पेत्रुस अपनी गलतियों को स्वीकार करना और पछतावा करना जानते हैं। बिना निराश हुए और सुसमाचार का प्रचार करने एवं मसीह के झुंड को एकत्रित करने के अपने मिशन में नाकाम हुए बिना, यहाँ तक कि शहीद होकर भी, जिसको उन्हें यहाँ रोम में झेलना पड़ा, जो हम जहाँ एकत्रित हैं उससे ज़्यादा दूर नहीं है। एकता के इस भरोसेमंद और धैर्यपूर्ण चिंता को कुंजियों के प्रतीक द्वारा व्यक्त की जाती है, जिसके साथ हम अक्सर पेत्रुस की पहचान करते हैं। कुंजी दरवाजों को तोड़ती नहीं, बल्कि यह भीतर उचित उत्तोलक ढूंढकर और उसकी गतिविधियों को संचालित करके उन्हें खोलती और बंद करती है ताकि ताले खुल सकें और दरवाजे अपने कब्जों पर स्वतंत्र रूप से घूम सकें, जिससे कमरे एक साथ जुड़ सकें और कई अलग अलग स्थानों को एक स्वागत योग्य घर में बदला जा सके। उसी प्रकार कलीसिया के भीतर सहभागिता लोगों की अपनी स्थिति से सख्ती से चिपके रहने से नहीं बनती, बल्कि सभी दिलों में सच्चाई से मुलाकात करने के बिंदुओं की तलाश करने से बनती है, जिसके प्रकाश में ही प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के विकास का साधन बनता है। इसी आलोक में हम प्रभु द्वारा पेत्रुस और उनके उत्तराधिकारियों को ईश्वर के संपूर्ण पौत्र प्रजा के हित सौंपे गए मिशन की व्याख्या कर सकते हैं। अपने भाइयों और बहनों को सिखाना, हिम्मत देना, समझाना और उनका साथ देना ताकि वे एक ही आत्मा के काम के प्रति समर्पित होकर एक दूसरे और पूरी मानव जाति के उद्धार में साथ दे सकें। इसके अलावा पेत्रुस का उदाहरण हर ख्रिस्ते को एकता बनाए रखने, ईश्वर को अपने जीवन के केंद्र में रखने और अपने भाइयों एवं बहनों के करीब आने और उनकी परिस्थितियों एवं जरूरतों पर ध्यान देने का निमंत्रण है। इस तरह हम एक दूसरे के साथ प्यार करना सीखते हैं ताकि सुसमाचार का प्रचार पूरी तरह से किया जा सके। इसके बाद संत पापा ने संत पौलुस के बारे बतलाते हुए कहा, यह संत पौलुस की भी शिक्षा है जिनका आज हम महापर्व मना रहे हैं और जो सुसमाचार के अथक संदेशवाहक हैं, उनके भी कुछ खास चिन्ह हैं, किताब और तलवार, जो एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े हैं। इब्रानियों के नाम पत्र के लेखक इसे अच्छी तरह से समझाते हैं जब वे लिखते हैं, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंततम में पहुंचता है और हमारे मन के भावों एवं विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। संत पापा ने कहा, यही ईश्वर ने युवा साउल के दिल में पूरी की। उन्हें जीतकर पहले सुसमाचार के प्रति मन परिवर्तन कराया और उसे एक नया नाम दिया और उन्हें फिर पूरी दुनिया में इसका प्रचार करने के लिए भेजा, जिन्हें संत पेत्रुस की तरह इसी शहर में अपनी जान देकर सुसमाचार की गवाही देनी पड़ी। संत अगस्टीन संत पौलुस के मन परिवर्तन एवं प्रेरिताएं पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, जब वे धमकियों एवं हत्याओं से भरे दिल के साथ दमिश्क जा रहे थे तो उन्हें नाम से पुकारा गया। एक स्वर्गीय वाणी ने उन्हें भूमि पर गिरा दिया, यानी उस वचन ने उन्हें बुलाया। और वे आगे कहते हैं,
ईश्वर ने कलीसिया के साथ

0: आने वाले को चुना और उन्हें शांति का संदेश वाहक बना दिया। उसने उसके सारे पाप क्षमा कर दिए और उन्हें एक ऐसी प्रेरिताय के लिए नियुक्त किया जहां वे दूसरों के पाप क्षमा कर सकें। संत पापा ने उपस्थित कार्डिनलों एवं धर्माध्यक्षों को संबोधित कर कहा, प्रिय मित्रों, आज हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इन दो संतों पेत्रुस और पौलुस की ओर देखें, ताकि हम यह समझ सकें कि हम कैसे एकता के प्रेरित और निर्माता एवं उदारता में सत्य के उदार सेवक बन सकते हैं। पोप ने आगे कहा, इसी भावना के साथ हम महाधर्माध्यक्षों को पाल्य प्रदान करने के प्राचीन एवं मार्मिक अनुष्ठान को मनाने वाले हैं। क्रूस से सजे सफेद उनके ये पट्टे वास्तव में हर चरवाहे की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं और हर ख्रिस्ते की भी। ईश्वर के झुंड के कई मेमनों की तरह उन्हें सौंपे गए भाइयों एवं बहनों को अपने कंधे पर लेने के लिए और उनके लिए अपनी शक्ति, समय, प्रयास और यहाँ तक कि अपने जीवन का बलिदान करने के लिए भी। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सुसमाचार हर एक व्यक्ति तक पहुँच सके और पूरी दुनिया इसमें सद्भाव एवं सामंजस्य पा सके। और अंत में संत पापा ने कुस्तुनतुनिया से आए प्रतिनिधियों को संबोधित कर कहा, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं कुस्तुनतुनिया के ख्रिस्ते एकता प्राधिधर्माध्यक्ष के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का दिल से अभिवादन करता हूँ, जिन्हें मेरे प्यारे भाई प्राधिधर्माध्यक्ष बर्थोलोमियो ने भेजा है और जिसका नेतृत्व खलदेई महाधर्माध्यक्ष इमानुएल एडमाकिस कर रहे हैं। प्रार्थना के लिए आमंत्रित करते हुए पोप लियो ने कहा, आइए हम संत पेत्रुस एवं पौलुस से प्रार्थना करें कि वे हमें मुक्तिदाता के पद चिन्हों पर हमारी एकता की यात्रा में हमारा साथ दें। यही वह रास्ता है जो उन्होंने हमारे लिए बनाया है, वही जिसके लिए उन्होंने अंतिम बिहारी में पिता से प्रार्थना की थी और वह लक्ष्य जिसके लिए उन्होंने हमें पक्की उम्मीद के साथ आगे बढ़ना सिखाया है।
1: La meta alla quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में तीर्थ यात्रियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने कहा, आज हम रोम के संरक्षक संत पेत्रुस और पौलुस का महोत्सव मना रहे हैं। यह त्यौहार उस असली बंधन को याद दिलाता है जो रोम की कलीसिया को दुनिया भर की दूसरी कलीसियाओं के साथ विश्वास और प्यार की एकता में जोड़ता है। संत पापा ने कहा कि सुसमाचार में इन दो प्रेरितों की गवाही एक सील का पत्थर है। इस शहर में उन्होंने जो खून बहाया वह ईश्वर के उस प्यार की गवाही को दिखाता है जो प्रभु येसु ने हमें दिया है। यह उनके वचन और उनकी शहादत से ही है कि ख्रीस्त का सुसमाचार एक तरह से रोम में जड़ जमा चुकी है। यही इसी राजधानी में ईश्वर के नए ज्ञान और हर इंसान की अनंत गरिमा के जरिए नवीनीकरण की अपनी शक्ति को दिखाता है। शक्ति की एक नई पहल प्रभुत्व के तौर पर नहीं बल्कि मानव जीवन की सेवा के तौर पर। संत पापा ने कहा, संत पेत्रुस और पौलुस एक दूसरे से बहुत अलग थे। उनकी पृष्ठभूमि, परवरिश और स्वभाव भी अलग थे, न सिर्फ बुलाए जाने से पहले बल्कि बुलाए जाने के बाद भी, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें एक जैसा नहीं बनाया था। पेत्रुस और पौलुस ने सुसमाचार को समझा, हर एक की अपनी अलग अलग आवाज में इसका प्रचार किया और पवित्र आत्मा ने सुसमाचार के लेखकों को प्रेरित करते हुए नहीं चाहा कि उनके अंतर छिपे रहें। ये अंतर हमें अच्छी खबर के तौर पर दिखाए गए हैं। संत पापा ने कहा कि प्रेरितों की मंडली में पेत्रुस और पौलुस एक तरह से उन कई अलग अलग चीजों की निशानी बन गए जिन्हें एक आत्मा पूर्णता से जोड़ती है। इस तरह रोम की कलीसिया के संरक्षक संतों ने मेल जोल की चुनौतियों का अनुभव किया। वे इसे जानते थे, इसकी सेवा करते थे और इसे दिव्य जीवन का संस्कार मानते थे। उनकी गवाही ने यह पक्का करने में अहम योगदान दिया है कि इतिहास में ख्रिस्तियों की उपस्थिति राज करने की तरफ से नहीं बल्कि सेवा, एकता और मेल मिलाप की तरफ से हो। देवदूत प्रार्थना करने के बाद संत पापा ने कहा, आज हम संत पेत्रुस पेंस दिवस अर्थात दान दिवस मना रहे हैं। मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो पेत्रुस के उत्तराधिकारी के तौर पर मेरे काम को अपने दान द्वारा समर्थन करते हैं। आइए हम विश्वास और मेल जोल के साथ साथ चलते रहें। संत पापा ने रोम के संरक्षक संतों के त्योहार पर रोम के लोगों और इस शहर में रहने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। संत पापा ने खासकर बीमारों, अकेले लोगों और कैदियों के लिए प्रार्थना की। संत पापा ने पल्ली पुरोहितों, रोम में काम करने वाले पुरोहितों, धर्म बहनों और धर्म संघियों का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वे अपनी मौजूदगी और दैनिक सेवा द्वारा महान ख्रिस्तीय दिल को जिंदा रखते हैं। फिर संत पापा ने प्रो लोको दी इतालिया के स्वयं सेवकों को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस दिन विया देला कोंचिलिया सियोने और पियाजा पियो 12वें में अनेक सुंदर अल्पना बनाए हैं। संत पापा ने गिरांडोला दी कास्तेल संत आंजेलो का भी शुक्रिया अदा किया जो इस साल संत फ्रांसिस असीसी की मृत्यु की 800वीं सालगिरह पर संत फ्रांसिस और सृष्टि को प्रकट करते हुए अल्पना बनाया। अंत में संत पापा ने उन बेघर लोगों का अभिवादन किया जो आज संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में ओजरवा तोरे दी स्त्रादा अखबार बांटने आए हैं। यह ओजरवातोरे रोमानो अखबार का पूरक है। इस समाचार पत्र का समर्थन करने वालों को संत पापा ने धन्यवाद और शुभकामनाएं दी और अंत में सभी को गर्मी की छुट्टियों की शुभकामनाएं दी। और रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान संत पापा लियो 14वें ने स्पानी भाषा में वेनेजुएला के प्रति अपनी नजदीकी जाहिर की, जहाँ इस हफ्ते एक के बाद एक दो बड़े भूकंप आए। उन्होंने सभी को पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ साथ बचाव दल के काम के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया। संत पापा ने कहा, मैं हाल के भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला के बहनों और भाइयों के प्रति अपनी नज़दीकी जाहिर करता हूँ। भूकंप की वजह से कई लोग पीड़ित और घायल हुए हैं। साथ ही बहुत सारा सामान भी बर्बाद हुआ है। हम पीड़ितों, उनके परिवारों और इस दुखद घटना के नतीजों से जूझ रहे सभी लोगों के लिए अपनी प्रार्थनाओं का भरोसा दिलाती हैं। हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उस प्यारे देश के प्रति एकजुटता में कमी न लाए। बचाव दल ला गुएरा में मलबा निकालने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। शनिवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,500 हो गई थी और लगभग 70,000 लोग अभी भी लापता हैं। संत पापा ने पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद के लिए तुरंत 1,00,000 यूरो का शुरुआती दान भेजा। और संत पापा लियो 14वें ने 26 और 27 जून तक वाटिकन में हुई असाधारण कंसिस्ट्री के अंत में अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने उम्मीद, सहभागिता, युद्ध और इंसानी रिश्तों में संकट से जूझ रही दुनिया में कलीसिया की जिम्मेदारी पर ध्यान दिया। संत पापा ने कहा, हमने प्रभु की इच्छा को एक साथ खोजा है, आश्वस्त किया है कि मसीह अपनी कलीसिया में कार्य करना जारी रखते हैं। ये वे ही हैं जो हमारे सामने जाते हैं, हमें इकट्ठा करते हैं, हमारे भाइयों के माध्यम से बोलते हैं और हमें मिशन में ले जाते हैं। सब कुछ उसी से आता है और सब कुछ उसी में लौट जाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेतरस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesantpetro.va पर जरूर जाएं।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे।

0: जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
1: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
1: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब, हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु येसु को क्रूस पर ठोका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नबियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

हे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा एक सिनोडल कलिसिया एकता सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर आज अपनी चर्चा करते हुए इसका समापन करेंगे। श्रोताओं, कलिसिया के हर संदर्भ में एक सुरक्षा की संस्कृति को प्रोत्साहित करना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे समुदाय नाबालिगों और अति संवेदनशील लोगों के लिए सुरक्षित स्थल बने। हमें कलिसिया में उन संरचनाओं को तैयार करने की आवश्यकता है जो दुराचार को रोकने और गलत व्यवहार पर समय पर कार्रवाई करने वाले नियम और कानूनी प्रक्रियाओं को अमल करती हों। हमें इस क्षेत्र में निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। उन लोगों को विशेष और पर्याप्त प्रशिक्षण देने की जरूरत है जो नाबालिगों और अति संवेदनशीलों के संपर्क में रहते हैं। वे जो चुप रहते, जो कठिनाई का अनुभव करते, उन्हें हमें मदद करने की जरूरत है। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम पीड़ितों का स्वागत और सहयोग करें। हमें इससे संवेदना में करने की जरूरत है। इसके लिए हमें वृहद नम्रता की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि हम पीड़ितों के दुख से प्रभावित हों और अपने को उनके संग पेश आने में ठोस कदम लें जो उन्हें ऊपर की ओर उठने में मदद करता हो। सुरक्षा की प्रक्रिया को चाहिए कि वह निरंतर देखरेख और मूल्यांकन की स्थिति में हो। हमें पीड़ितों और बचाव किए लोगों का अति संवेदनशील ढंग से स्वागत और सहायता करने की आवश्यकता है। श्रोताओं, कलिसिया की सामाजिक शिक्षा, शांति और न्याय के लिए समर्पण, सामान्य निवास की देखरेख और अंतर सांस्कृतिक और अंतर धार्मिक वार्ता के संबंध में ईश प्रजा को और अधिक विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है, जिससे प्रेरितों की प्रेरिताई एक अधिक न्याय और करुणामय समाज के निर्माण में प्रभावकारी हो सके। जीवन और मानव अधिकारों की रक्षा, समाज को सही तरीके से व्यवस्थित करना, कार्य का सम्मान, एक सही और मददगार अर्थव्यवस्था और एक पूरी पारिस्थितिकी के लिए समर्पण उस सुसमाचार प्रेरिताई का हिस्सा है जिसे कलिसिया जीने और इतिहास में शामिल करने के लिए बुलाई गई है। श्रोताओं, चमत्कारी ढंग से मछलियों का पकड़ा जाना एक भोज के साथ समाप्त होता है। पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों को अपनी आज्ञा का पालन करने को कहते हैं। वे उन्हें जाल फेंकने और उसे तट पर खींचने को कहते हैं। यह प्रभु हैं, यद्यपि वे उनके लिए भोजन की तैयारी करते हैं और उन्हें खाने को बुलाते हैं। हम उनके लिए रोटियों और मछलियों को पाते हैं, जैसे कि उन्होंने उसे चमत्कारिक ढंग से भूखी भीड़ को खिलाने हेतु दुगुना किया। सारे के सारे उनकी उपस्थिति से अपने को आश्चर्य और विस्मित पाते हैं। यह इतना स्पष्ट था कि किसी को सवाल पूछने की जरूरत नहीं होती है। उनके संग और एक बार भोजन करना जो उनके परित्याग और नकारने के बाद होता है, वे पुनः उन्हें अपने संग एकता में बने रहने को निमंत्रण देते हैं। वे उनके ऊपर अनंत करुणा की मोहर लगाते हैं जो उन्हें भविष्य के लिए खोलता है। जिन्होंने इस पास्का में भाग लिया, यह निश्चित रूप में उनके समान था जिन्होंने पुनरुत्थान के बाद उनके संग खाया पिया। श्रोताओं, अपने शिष्यों के संग भोजन करने के द्वारा पुनर्जीवित यीशु नबी इसायस की निशानी को पूरा करते हैं। उन शब्दों ने सिनोडल सभा के कार्य को प्रेरित किया है। पहाड़ की चोटी पर प्रभु द्वारा तैयार किया गया एक अति स्वादिष्ट और शानदार भोज, जो सभी लोगों के लिए एकता में रहने और मेल जोल का प्रतीक है। पुनरुत्थान के उपरांत यीशु ख्रिस्त के द्वारा शिष्यों के लिए तैयार किया गया जलपान उनके स्वर्गीय भोज की एक निशानी है, जिसे हम पहले से ही शुरू पाते हैं। यद्यपि इसकी पूर्णता केवल स्वर्ग में होती है, कृपा का भोज और करुणा हम सबों के लिए पहले से ही तैयार किया गया है। कलीसिया को इस अति सुंदर घोषणा को बदलती दुनिया में प्रेरिताई स्वरूप पूरा करने की जिम्मेदारी मिली है। यूखारिस्त में येसु ख्रिस्त के शरीर और रक्त से पोषित होने के द्वारा कलीसिया इस बात का एहसास करती है कि वह दरिद्रों, परित्यक्त, हाशिए में रहने वालों, वे जो प्रेम के बारे में नहीं जानते और आशाहीन जीवन यापन करते हैं, वे जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते या स्वयं को किसी स्थापित धर्म का अंग नहीं मानते हैं, नहीं छोड़ सकती है। अपनी प्रार्थना में वह उन्हें ईश्वर के समक्ष लाती है और तत्पश्चात वह उनके संग मिलन हेतु सृजनात्मकता और आत्मा से प्रेरित साहस में बाहर जाती है। कलीसिया की सिनोडालिटी इस भांति आज की दुनिया के लिए सामाजिक भविष्यवाणी बनती है, राजनैतिक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में नए रास्तों के लिए प्रेरित करती, इसके साथ ही दुनिया के उपहारों के आदान प्रदान में उन सभी लोगों के संग सहयोग करती है जो भाईचारे और शांति में विश्वास करते हैं। श्रोताओं, सिनोडल प्रक्रिया के अनुरूप जीवन यापन करते हुए हम अपनी चेतना को नवीकृत करते हैं। जो मुक्ति हमें मिली है, हमें उसे घोषित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह वास्तविक रूप में हमें एक दूसरे से संयुक्त करती है। हम इसे जीते और इसे एक साथ साझा करते हैं। इतिहास हमें युद्ध, सत्ता के लिए होड़ और हजारों अन्याय और जुल्मों से दुखद स्वरूप को भरा हुआ दिखाता है। यद्यपि हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में हर मानव में एक सच्चे संबंध और सच्ची एकता की चाह को स्थापित करते हैं। सृष्टि स्वयं हमें एकता और दूसरों के संग चीजों को साझा करने की शिक्षा देती है, जहां हम जीवन को विभिन्न रूपों में एक दूसरे से जुड़ा पाते हैं। हर चीज एकता से उत्पन्न होती और एकता में बने रहने को अग्रसर करती है, यद्यपि यह बुराई से विकृत क्यों

एकता में, पूरी मानवता और सृष्टि के संग एकता में हमें बनाए रखता है। इस भांति हम इस आदान प्रदान के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम ईश्वरीय जीवन के भोज का अनुभव पहले से करते हैं, जिसे वे हम सबों के लिए प्रदान करते हैं। हम सिनोडल के परिणामों को कुमारी मरियम को अर्पित करते हैं। वे हमारी दिशा निर्देशिका हैं, कलिसिया की माता, जिन्होंने अंतिम व्यारी की कोठरी में शिष्यों को एक नए समुदाय का निर्माण करने में साथ दिया, जिससे वे अपने को पवित्र आत्मा के लिए खोल सकें। हमें शिष्यों और प्रेरितों के रूप में एक साथ चलने और एक सिनोडल कलिसिया बनने में वे मदद करें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने हेतु गठित परम धम पीठे विभाग के लिए नए अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए सिस्टर अलेसांद्रा स्मारेली को विभाग के अध्यक्ष, कार्डिनल फाबियो बाजो को प्रो प्रीफेक्ट एवं मॉन्सिनियर जोसेफ बरलाश को सचिव नियुक्त किया है। तीनों नियुक्तियों की घोषणा 30 जून को हुई और ये 1 सितंबर 2026 से लागू होंगी। डॉन बोस्को की सलेशन धम्भन सिस्टर अलेसांद्रा स्मारेली 2021 से विभाग की सचिव के रूप में कार्यरत थीं, जो अब अध्यक्ष के रूप में विभाग का संचालन करेंगी। वे कार्डिनल माइकल चेरनी की जगह लेंगी, जो 2022 से विभाग के प्रीफेक्ट थे। कार्डिनल फाबियो बाजो, जिनकी नियुक्ति प्रो प्रीफेक्ट के रूप में हुई है, विभाग के उप सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। अपनी नई भूमिका में कार्डिनल बाजो को लौदातो सी उच्च शिक्षा केंद्र की खास जिम्मेदारी दी गई है, जो सृष्टि की देखभाल से प्रेरित होकर समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए परम धम पीठ की लगातार प्रतिबद्धता को दिखाता है। वहीं मॉन्सिनियर जोसेफ बलाश, जिन्हें पोप ने समग्र मानव विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया है, विभाग में अब तक उप सचिव के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। इन नियुक्तियों के साथ समग्र मानव विकास के संचालन हेतु नई टीम पूरी हो गई है। यह वैटिकन का वह विभाग है जो न्याय एवं शांति, आप्रवासन, स्वास्थ्य देखभाल, परोपकार, सृष्टि की देखभाल और दुनिया भर में मानव गरिमा को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में कलीसिया के काम को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। रोम में कुस्तुनतुनिया के ख्रिस्ती एकता प्राधिधर्म अध्यक्ष के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पोप लियो 14वें ने कहा कि युद्ध एवं ध्रुवीकरण के इस समय में सभी ख्रिस्तियों को भरोसेमंद गवाह बनने के लिए बुलाया गया है, और उन्होंने यह भी उम्मीद जताई

कि वर्ष 2033 को सभी ख्रिस्ते मिलकर मनाएंगे, जिसको प्रभु के उद्धार के 2000 साल पूरा होने की यादगारी में मनाया जाएगा। संत पेतुस एवं संत पौलुस के महापर्व के लिए कुस्तुंतुनिया के ख्रिस्ते एकता प्राधिधर्म अध्यक्ष के प्रतिनिधियों से पोप लियो चौथवें ने 30 जून को रोम में मुलाकात की। इस अवसर पर पोप ने उन्हें संबोधित कर कहा, वर्ष 2033 में मुक्ति की दूसरी सहस्राब्दी का उत्सव मनाने की यात्रा दुनिया के सभी ख्रिस्त समुदायों द्वारा एक साथ की जाए और पुनर्जीवित प्रभु के गवाह बनने के वरदान एवं बुलावे को फिर से खोजा जाए। पर्व के मौके पर उनका स्वागत करते हुए एवं खुशी व्यक्त करते हुए पोप लियो ने कहा कि उनकी उपस्थिति कुस्तुंतुनिया में हमारी बहन कलीसिया और उसके चरवाहे एवं मार्गदर्शक ख्रिस्ते एकता प्राधिधर्म अध्यक्ष मानने बर्थोलोमियो के बीच भ्रातृत्वपूर्ण करीबी को दिखाती है। उन्होंने कहा कि वे ख्रिस्ते एकता प्राधिधर्म अध्यक्ष एवं पौत्र सिनट के सभी सदस्यों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपनी अपनी कलीसियाओं के संरक्षक संतों के त्योहारों पर पारंपरिक रूप से आने जाने का सिलसिला जारी रखने के लिए रोम में प्रतिनिधि भेजा है। उन्होंने पिछले साल फनार में संत जॉर्ज के प्राधिधर्म अध्यक्ष गिरजाघर में संत अंद्रियास के त्योहार में शामिल होने की खुशी को याद किया। पोप ने ख्रिस्ते एकता प्राधिधर्म अध्यक्ष बर्थोलोमियो के साथ अपनी मुलाकातों को भी खुशी से याद किया, जिससे उनकी आपसी मित्रता और गहरी हुई एवं कई मुद्दों पर विचारों को अधिक आदान प्रदान करने में मदद मिली। सबसे बढ़कर सभी ख्रिस्तों के बीच पूर्ण एकता की ओर बढ़ने की इच्छा। इस बारे में पोप ने कहा कि इज़निक में संत अंद्रियास के पर्व के एक दिन पहले नाइसिया की पहली महासभा की 17वीं सालगिरह का उत्सव उन लोगों के बीच पहले से मौजूद मेल जोल का एक ठोस सबूत है जो सभी के पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और जो येसु ख्रिस्त को ईश्वर का प्रभु और पुत्र मानते हैं एवं पौत्र आत्मा में विश्वास करते हैं, जो हमें प्रेरित करते एवं हमें सच्चाई और एकता की पूर्णता की ओर ले जाते हैं। पोप लियो ने जोर देकर कहा, उस यादगार कार्यक्रम ने यह साफ कर दिया कि नाइसिन धर्मसार इस दुनियावी यात्रा का आधार एवं मार्गदर्शन करने वाला सिद्धांत होना चाहिए। युद्धों और बढ़ते ध्रुवीकरण के साथ ही सांस्कृतिक एवं सामाजिक बंटवारे वाले इस दौर में पोप ने जोर देकर कहा, उन सभी ख्रिस्तियों को जो आपस में मेल मिलाप रखते हैं और एक ही धर्म को मानते हैं, शांति की भरोसेमंद निशानी बनने के लिए बुलाया गया है, ताकि वे शांति निर्माण के अच्छे इरादे वाले सभी पुरुषों एवं महिलाओं की कोशिशों में अहम योगदान दे सकें। अपने संबोधन के अंत में पोप ने इस दौरे के लिए साथी प्रतिनिधि एवं ख्रिस्ते एकता को बढ़ावा देने के लिए ख्रिस्ते एकता प्राधिधर्म अध्यक्ष के व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए फिर से सहृदय शुक्रिया अदा किया। पोप लियो चौदहवें ने संत पियूस दसवें के पुरोहितों की सोसाइटी के सुपीरियर जनरल को एक पत्र भेजा है। पत्र 29 जून संत पेतरुस एवं संत पौलुस के महापर्व के दिन एवं परमधम पीठे आदेश के बिना लेफेब्रिस्टस के धर्म अध्यक्षों के रूप में अभिषेक की घोषणा से दो दिन पहले का है, जिसके द्वारा एक नया विभाजन उत्पन्न होगा। पोप लियो चौदहवें ने हाल ही में कस्तेल गंदोल्फो में पत्रकारों के साथ अपनी मुलाकात के दौरान घोषणा की थी कि उन्होंने संत पियूस दसवें के पुरोहितों की सोसाइटी से आखिरी अपील की है, जिसमें उनसे कहा है कि वे परमधम पीठे आदेश के बिना 1 जुलाई की सुबह स्विट्जरलैंड के इकोन में होने वाले 4 नए धर्म अध्यक्षों के अभिषेक के साथ आगे ना बढ़ें। पोप लियो लिखते हैं, एक पिता जैसे दिल से और प्रेरित संत पेतरुस के उत्तराधिकारी के रूप में प्रभु द्वारा मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी को समझते हुए मैं आपसे और आपके द्वारा संत पियूस दसवें की पुरोहित्य सोसाइटी से जुड़े धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, सेमिनरी छात्रों और विश्वासियों से बात करता हूँ। पोप आगे कहते हैं, इसी भावना से और ख्रिस्ते प्यार से भरकर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और पूरे दिल से आग्रह करता हूँ, कृपया वापस आ जाइए। काराकास में संत जोश पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर लुइस गार्सिया ने बताया कि वेनेजुएला में भूकंप के बाद लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पोप लियो चौदहवें के शब्द हम सभी के लिए प्रोत्साहन के स्रोत हैं। फादर गार्सिया लोगों को एकजुटता एवं प्रार्थना की भावना से जीने का प्रोत्साहन देते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार। आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें।
संत पापा की प्रेरिताएं शांति आशा करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisantpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा एक सिनोडल कलिसिया एकता सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर आज अपनी चर्चा करते हुए इसका समापन करेंगे। श्रोताओं, कलिसिया के हर संदर्भ में एक सुरक्षा की संस्कृति को प्रोत्साहित करना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे समुदाय नाबालिगों और अति संवेदनशील लोगों के लिए सुरक्षित स्थल बने। हमें कलिसिया में उन संरचनाओं को तैयार करने की आवश्यकता है जो दुराचार को रोकने और गलत व्यवहार पर समय पर कार्रवाई करने वाले नियम और कानूनी प्रक्रियाओं को अमल करती हों। हमें इस क्षेत्र में निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। उन लोगों को विशेष और पर्याप्त प्रशिक्षण देने की जरूरत है जो नाबालिगों और अति संवेदनशीलों के संपर्क में रहते हैं। वे जो चुप रहते, जो कठिनाई का अनुभव करते, उन्हें हमें मदद करने की जरूरत है। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम पीड़ितों का स्वागत और सहयोग करें। हमें इससे संवेदना में करने की जरूरत है। इसके लिए हमें वृहद नम्रता की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि हम पीड़ितों के दुख से प्रभावित हों और अपने को उनके संग पेश आने में ठोस कदम लें जो उन्हें ऊपर की ओर उठने में मदद करता हो। सुरक्षा की प्रक्रिया को चाहिए कि वह निरंतर देखरेख और मूल्यांकन की स्थिति में हो। हमें पीड़ितों और बचाव किए लोगों का अति संवेदनशील ढंग से स्वागत और सहायता करने की आवश्यकता है। श्रोताओं, कलिसिया की सामाजिक शिक्षा, शांति और न्याय के लिए समर्पण, सामान्य निवास की देखरेख और अंतर सांस्कृतिक और अंतर धार्मिक वार्ता के संबंध में ईश प्रजा को और अधिक विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है, जिससे प्रेरितों की प्रेरिताई एक अधिक न्याय और करुणामय समाज के निर्माण में प्रभावकारी हो सके। जीवन और मानव अधिकारों की रक्षा, समाज को सही तरीके से व्यवस्थित करना, कार्य का सम्मान, एक सही और मददगार अर्थव्यवस्था और एक पूरी पारिस्थितिकी के लिए समर्पण उस सुसमाचार प्रेरिताई का हिस्सा है जिसे कलिसिया जीने और इतिहास में शामिल करने के लिए बुलाई गई है। श्रोताओं, चमत्कारी ढंग से मछलियों का पकड़ा जाना एक भोज के साथ समाप्त होता है। पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों को अपनी आज्ञा का पालन करने को कहते हैं। वे उन्हें जाल फेंकने और उसे तट पर खींचने को कहते हैं। यह प्रभु हैं, यद्यपि वे उनके लिए भोजन की तैयारी करते हैं और उन्हें खाने को बुलाते हैं। हम उनके लिए रोटियों और मछलियों को पाते हैं, जैसे कि उन्होंने उसे चमत्कारिक ढंग से भूखी भीड़ को खिलाने हेतु दुगुना किया। सारे के सारे उनकी उपस्थिति से अपने को आश्चर्य और विस्मित पाते हैं। यह इतना स्पष्ट था कि किसी को सवाल पूछने की जरूरत नहीं होती है। उनके संग और एक बार भोजन करना जो उनके परित्याग और नकारने के बाद होता है, वे पुनः उन्हें अपने संग एकता में बने रहने को निमंत्रण देते हैं। वे उनके ऊपर अनंत करुणा की मोहर लगाते हैं जो उन्हें भविष्य के लिए खोलता है। जिन्होंने इस पास्का में भाग लिया, यह निश्चित रूप में उनके समान था जिन्होंने पुनरुत्थान के बाद उनके संग खाया पिया। श्रोताओं, अपने शिष्यों के संग भोजन करने के द्वारा पुनर्जीवित यीशु नबी इसायस की निशानी को पूरा करते हैं। उन शब्दों ने सिनोडल सभा के कार्य को प्रेरित किया है। पहाड़ की चोटी पर प्रभु द्वारा तैयार किया गया एक अति स्वादिष्ट और शानदार भोज, जो सभी लोगों के लिए एकता में रहने और मेल जोल का प्रतीक है। पुनरुत्थान के उपरांत यीशु ख्रिस्त के द्वारा शिष्यों के लिए तैयार किया गया जलपान उनके स्वर्गीय भोज की एक निशानी है, जिसे हम पहले से ही शुरू पाते हैं। यद्यपि इसकी पूर्णता केवल स्वर्ग में होती है, कृपा का भोज और करुणा हम सबों के लिए पहले से ही तैयार किया गया है। कलीसिया को इस अति सुंदर घोषणा को बदलती दुनिया में प्रेरिताई स्वरूप पूरा करने की जिम्मेदारी मिली है। यूखारिस्त में येसु ख्रिस्त के शरीर और रक्त से पोषित होने के द्वारा कलीसिया इस बात का एहसास करती है कि वह दरिद्रों, परित्यक्त, हाशिए में रहने वालों, वे जो प्रेम के बारे में नहीं जानते और आशाहीन जीवन यापन करते हैं, वे जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते या स्वयं को किसी स्थापित धर्म का अंग नहीं मानते हैं, नहीं छोड़ सकती हैं। अपनी प्रार्थना में वह उन्हें ईश्वर के समक्ष लाती है और तदपश्चात वह उनके संग मिलन हेतु सृजनात्मकता और आत्मा से प्रेरित साहस में बाहर जाती है। कलीसिया की सिनोडालिटी इस भांति आज की दुनिया के लिए सामाजिक भविष्यवाणी बनती है, राजनैतिक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में नए रास्तों के लिए प्रेरित करती, इसके साथ ही दुनिया के उपहारों के आदान प्रदान में उन सभी लोगों के संग सहयोग करती है जो भाईचारे और शांति में विश्वास करते हैं। श्रोताओं, सिनोडल प्रक्रिया के अनुरूप जीवन यापन करते हुए हम अपनी चेतना को नवीकृत करते हैं। जो मुक्ति हमें मिली है, हमें उसे घोषित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह वास्तविक रूप में हमें एक दूसरे से संयुक्त करती है। हम इसे जीते और इसे एक साथ साझा करते हैं। इतिहास हमें युद्ध, सत्ता के लिए होड़ और हजारों अन्याय और जुल्मों से दुखद स्वरूप को भरा हुआ दिखाता है। यद्यपि हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में हर मानव में एक सच्चे संबंध और सच्ची एकता की चाह को स्थापित करते हैं। सृष्टि स्वयं हमें एकता और दूसरों के संग चीजों को साझा करने की शिक्षा देती है, जहां हम जीवन को विभिन्न रूपों में एक दूसरे से जुड़ा पाते हैं। हर चीज एकता से उत्पन्न होती और एकता में बने रहने को अग्रसर करती है, यद्यपि यह बुराई से विकृत क्यों ना की गई हो। सिनोडालिटी का मुख्य लक्ष्य अपने में साक्ष्य देना है कि कलीसिया का बुलावा ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो प्रेम की एकता हैं, अपने को हमारे लिए प्रवाहित करते हैं, जो अपने को दुनिया के लिए प्रदान करते हैं। हम एकता को जी सकते हैं, जो हमें सिनोडल रूप में चलते हुए बचाती है, जो हमारी बुलाहट के ताने बाने में बनी है, हमारे आदर्श और प्रेरिताई में, हमारे स्वयं से बाहर निकलकर हर एक से मिलने में, जिससे हम सुसमाचार की खुशी को ला सकें, जो हमारे ईश्वर के संग एकता में पूरी मानवता और सृष्टि के संग एकता में हमें बनाए रखता है। इस भांति हम इस आदान प्रदान के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम ईश्वरीय जीवन के भोज का अनुभव पहले से करते हैं, जिसे वे हम सबों के लिए प्रदान करते हैं। हम सिनोडल के परिणामों को कुमारी मरियम को अर्पित करते हैं। वे हमारी दिशा निर्देशिका हैं, कलीसिया की माता, जिन्होंने अंतिम व्यारे की कोठरी में शिष्यों को एक नए समुदाय का निर्माण करने में साथ दिया, जिससे वे अपने को पवित्र आत्मा के लिए खोल सकें। हमें शिष्यों और प्रेरितों के रूप में एक साथ चलने और एक सिनोडल कलीसिया बनने में वे मदद करें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने हेतु गठित परम धम्म पीठ विभाग के लिए नए अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए सिस्टर अलेसांद्रा स्मारेली को विभाग की अध्यक्ष, कार्डिनल फाबियो बाजो को प्रो प्रीफेक्ट एवं मॉन्सिनियर जोसेफ बरलाश को सचिव नियुक्त किया है। तीनों नियुक्तियों की घोषणा 30 जून को हुई और ये 1 सितंबर 2026 से लागू होंगी। डॉन बोस्को की सिलेक्शन धम्मबहन सिस्टर अलेसांद्रा स्मारेली 2021 से विभाग की सचिव के रूप में कार्यरत थीं, जो अब अध्यक्ष के रूप में विभाग का संचालन करेंगी। वे कार्डिनल माइकल चेरनी की जगह लेंगी, जो 2022 से विभाग के प्रीफेक्ट थे। कार्डिनल फाबियो बाजो, जिनकी नियुक्ति प्रो प्रीफेक्ट के रूप में हुई है, विभाग के उप सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। अपनी नई भूमिका में कार्डिनल बाजो को लौदातो सी उच्च शिक्षा केंद्र की खास जिम्मेदारी दी गई है, जो सृष्टि की देखभाल से प्रेरित होकर समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए परम धम्म पीठ की लगातार प्रतिबद्धता को दिखाता है। वहीं मॉन्सिनियर जोसेफ बलाश, जिन्हें पोप ने समग्र मानव विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया है, विभाग में अब तक उप सचिव के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। इन नियुक्तियों के साथ समग्र मानव विकास के संचालन हेतु नई टीम पूरी हो गई है। यह वैटिकन का वह विभाग है जो न्याय एवं शांति, आप्रवासन, स्वास्थ्य देखभाल, परोपकार, सृष्टि की देखभाल और दुनिया भर में मानव गरिमा को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में कलीसिया के काम को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। रोम में कुस्तुनतुनिया के ख्रिस्ती एकता प्राधिधर्माध्यक्ष के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पोप लियो 14वें ने कहा कि युद्ध एवं ध्रुवीकरण के इस समय में सभी ख्रिस्तियों को भरोसेमंद गवाह बनने के लिए बुलाया गया है, और उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि वर्ष 2033 को सभी ख्रिस्ते मिलकर मनाएंगे, जिसको प्रभु के उद्धार के 2000 साल पूरा होने की यादगारी में मनाया जाएगा। संत पेतरस एवं संत पॉलस के महापर्व के लिए कुस्तुनतुनिया के ख्रिस्ते एकता प्राधिधर्माध्यक्ष के प्रतिनिधियों से पोप लियो 14वें ने 30 जून को रोम में मुलाकात की। इस अवसर पर पोप ने उन्हें संबोधित कर कहा, वर्ष 2033 में मुक्ति की दूसरी सहस्राब्दी का उत्सव मनाने की यात्रा दुनिया के सभी ख्रिस्त समुदायों द्वारा एक साथ की जाए और पुनर्जीवित प्रभु के गवाह बनने के वरदान एवं बुलावे को फिर से खोजा जाए। पर्व के मौके पर उनका स्वागत करते हुए एवं खुशी व्यक्त करते हुए पोप लियो ने कहा कि उनकी उपस्थिति कुस्तुनतुनिया में हमारी बहन कलीसिया और उसके चरवाहे एवं मार्गदर्शक ख्रिस्ती एकता प्राधिधर्माध्यक्ष माननीय बर्थोलोमियो के बीच भ्रातृत्वपूर्ण करीबी को दिखाती है। उन्होंने कहा कि वे ख्रिस्ती एकता प्राधिधर्माध्यक्ष एवं पौत्र सिनट के सभी सदस्यों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपनी अपनी कलीसियाओं के संरक्षक संतों के त्योहारों पर पारंपरिक रूप से आने जाने का सिलसिला जारी रखने के लिए रोम में प्रतिनिधि भेजा है। उन्होंने पिछले साल फनार में संत जॉर्ज के प्राधिधर्माध्यक्ष गिरजाघर में संत अंद्रियास के त्योहार में शामिल होने की खुशी को याद किया। पोप ने ख्रिस्ती एकता प्राधिधर्माध्यक्ष बर्थोलोमियो के साथ अपनी मुलाकातों को भी खुशी से याद किया, जिससे उनकी आपसी मित्रता और गहरी हुई एवं कई मुद्दों पर विचारों को अधिक आदान प्रदान करने में मदद मिली। सबसे बढ़कर सभी ख्रिस्तों के बीच पूर्ण एकता की ओर बढ़ने की इच्छा। इस बारे में पोप ने कहा कि इज़निक में संत अंद्रियास के पर्व के एक दिन पहले नाइसिया की पहली महासभा की 17वीं सालगिरह का उत्सव उन लोगों के बीच पहले से मौजूद मेल जोल का एक ठोस सबूत है, जो सभी के पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और जो यीशु ख्रिस्त को ईश्वर का प्रभु और पुत्र मानते हैं एवं पौत्र आत्मा में विश्वास करते हैं, जो हमें प्रेरित करते एवं हमें सच्चाई और एकता की पूर्णता की ओर ले जाते हैं। पोप लियो ने जोर देकर कहा, उस यादगार कार्यक्रम ने यह साफ कर दिया कि नाइसिन धर्मसार इस दुनियावी यात्रा का आधार एवं मार्गदर्शन करने वाला सिद्धांत होना चाहिए। युद्धों और बढ़ते ध्रुवीकरण के साथ ही सांस्कृतिक एवं सामाजिक बंटवारे वाले इस दौर में पोप ने जोर देकर कहा, उन सभी ख्रिस्तियों को जो आपस में मेल मिलाप रखते हैं और एक ही धर्म को मानते हैं, शांति की भरोसेमंद निशानी बनने के लिए बुलाया गया है, ताकि वे शांति निर्माण के अच्छे इरादे वाले सभी पुरुषों एवं महिलाओं की कोशिशों में अहम योगदान दे सकें।
अपने संबोधन के अंत में पोप ने इस दौरे के लिए साथी प्रतिनिधि एवं ख्रिस्ती एकता को बढ़ावा देने के लिए ख्रिस्ती एकता प्राधिकरण अध्यक्ष के व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए फिर से सहृदय शुक्रिया अदा किया। पोप लियो 14वें ने संत पियूस 10वें के पुरोहितों की सोसाइटी के सुपीरियर जनरल को एक पत्र भेजा है। पत्र 29 जून संत पेत्रुस एवं संत पौलुस के महापर्व के दिन एवं परमधम पीठे आदेश के बिना लेफेब्रिस्टस के धर्माध्यक्षों के रूप में अभिषेक की घोषणा से दो दिन पहले का है, जिसके द्वारा एक नया विभाजन उत्पन्न होगा। पोप लियो 14वें ने हाल ही में कस्तेल गंदोल्फो में पत्रकारों के साथ अपनी मुलाकात के दौरान घोषणा की थी कि उन्होंने संत पियूस 10वें के पुरोहितों की सोसाइटी से आखिरी अपील की है, जिसमें उनसे कहा है कि वे परमधम पीठे आदेश के बिना 1 जुलाई की सुबह स्विट्जरलैंड के इकोन में होने वाले 4 नए धर्माध्यक्षों के अभिषेक के साथ आगे न बढ़ें। पोप लियो लिखते हैं, एक पिता जैसे दिल से और प्रेरित संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में प्रभु द्वारा मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी को समझते हुए मैं आपसे और आपके द्वारा संत पियूस 10वें की पुरोहित्य सोसाइटी से जुड़े धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, सेमिनरी छात्रों और विश्वासियों से बात करता हूँ। पोप आगे कहते हैं, इसी भावना से और ख्रिस्ते प्यार से भरकर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और पूरे दिल से आग्रह करता हूँ, कृपया वापस आ जाइए। काराकास में संत जोश पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर लुइस गार्सिया ने बताया कि वेनेजुएला में भूकंप के बाद लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पोप लियो 14वें के शब्द हम सभी के लिए प्रोत्साहन के स्रोत हैं। फादर गार्सिया लोगों को एकजुटता एवं प्रार्थना की भावना से जीने का प्रोत्साहन देते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार। आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisanpietro.va पर जरूर जाएं।